0: 나게 마주어 불마유예로 봐요. 어, 이란 머리 실려본 날이 네 비바그버터 까타 밀타샤리 비스타락을 주어봐. 네 비꼬 마이마 아파라 부자누 리라우나이까 샤바. 마카니 따울리 따샬라 파니카네 엄커라. 내라이 가리 짜리라 너 볼빠겠죠 안 그래지꺼 가를 퍼라. 내 나니 띠미따 뽀에리 빠빠리 단따이 말라우네 디리 나 집안하고 서마라 나가래 아웅다이나 저반피리. 날지니 저거라 라이지 슈크멜 시그렛 라이 차이니 썰라이 요강 버리고 고차시 빨루 조라 카타이다 우마와 제나니 띠미따 뽀에리 빠따리 단따이 말라우네 디리 아프나 지만고 서마라 나가래 아웅다이나 저반피리. 많이 아플래? 울리 많이. 예 바부 퍼키 떠라이 시팔루 저 한쭈 밤멀 떠라이. 예 무르카 떠또 서바이 비타라 먹바타 걸쳐 시키나 바람바라. 바타라 자오시 아와서리가 차디 마르누 저 떠이래 나이 떠파차디. 만에 울리 담기 딘자
1: 에라간 순이 대우 샷테 마이마 비타라 걸쭈야 सत्यैले गरि कीर्ति अन्ते रहने जानिदिनु सबता धर्मै पूर्वक राज्य पालन गरी गर्दै राजा अनि सन्तान केही नहुँदा सधैँ ती रहने अत्यन्त दिगदारी बनी. एक दिन सामु भएर नारी निरपकी यो बिन्ती गर्छिन् त दुखी छौ महाराज हामी बहुतै सम्पन्न हुँदामा सोध्नुहोस् गुरुका गएर अहिले कुन कर्मले यो गरी छोरो जन्म न जान्छ पूर्ण जुनीको सम्पूर्ण बाधारी सन्तानदेखि रहित भएर रहँदा भन्छन् अपुत्री पनि मर्दामा पनि पिन्न पानी नमिलाने छुट्नेछ स्वर्गाई पनि. यस्तो धेर बिलाप गरेर दुखी भई रुइन्ती रानी अनि सम्झाइकन रानीलाई सब बात उठे ती राजा पनि. पहुँची आश्रममा वशिष्ठ मुनिका सङ्गमा सुझाए तहाँ ए सर्वज्ञ गुरु कसो गरी हुनन् छोरा मलाई सन्तान त तिमीलाई छैन निरपते यस्तो बताए तर छोराको मुखसम्म हेर्नु छ भने एउटा प्रतिज्ञा गर. त्यही बालक यज्ञमा बलि गरी हुन्छौ भने त्यो गरी होला पुत्र असल उनै बरु नको हुँदैन दोस्रो गरी. राजाले मनमा विचार गरिदिए यसै कसरी फिरुँ छोराको मुख हेरी पितृ ऋण त छुट्नेछ मेरो बरु. यस्तो धेर बिलाप गरेर दुखी भई रुन्ती रानी अनि सम्झाई सब रानीलाई सब बात उठे ती राजा पनि. पहुँची आश्रममा वशिष्ठ मुनिका सङ्गमा सुझाए तहाँ हे सर्वज्ञ गुरु कसो गरी हुनन् छोरा मलाई यहाँ. सुखी ब्रह्मन कोई एका घारा माथिये दलित्रियति थिये बालक तीना पुत्र उनका आपू दुई दंपति सलाह करी ज्येष्ठ बाबू तीरा भो हर्षयो मन मुतलाई पाई त्यो मासता बिती गयो खबरै न पाई आए फेरी बरुणजी दृढ रूप धारी पूजा गरे नृपतिले गरी भौति बारी बिन्ती गरे वरुणको शव दाँत आओस् यो पुत्र यज्ञ पशुलायक होइ जाओस् दाँतै नउम्रिदिनु छैन बलि भनेर देखिन्छ शस्त्रहरूमै कुरा सुनेर यति भनी वरुण घरतिर फर्किआए राजा खुसी भइ नुहारन

0: कश्या माता कश्या पिता कश्या भाई कश्या श्रीमती कश्या छोरा
1: छोरा
0: कसो धन सम्पत्ति केही लानु छैन।

0: दुर्गा प्रसाद सेवापति कानून साहब सुनखानी सुनसारा सुदामा की नारी कर चीन भारी विपत्ति पति से जाई विनती कर चिंता पिटरले गुरु देवता राजा रूप भला मान सका निदान खाली हर बंचन कहीं ज्योति समान देव के सौगर मन देव चंगा करके चौधरी का हरिषित मुलाका नगरी में इच्छा वर्तन में विचार मुठरे तंबु जमा कर दी सही तंबु अली गए प्रयोजित गपू के द्वारिका में
1: नारायण
0: जनो बालका ओ जननो बालका ओ जगमग करणे मन चित हरणे।

0: गर्ला भन्ने सोचमा पो छु त नानी। साँची नानी, किवी खेतीका लागि चाहिने आवश्यक बिरुवाहरू चाहिँ कहाँ पाइन्छन् तिमीलाई थाहा छ?
1: किन थाहा नहुनु नि काका, विगत 11 वर्षदेखि किवी खेती गर्दै आएको टासिदेले बहुद्देश्य कृषि तथा पशुपालन फार्म छँदैछ नि, जहाँ किवीका चार जातका बिरुवा पाइन्छन्। 1000 भन्दा माथिका बिरुवा खरिद गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रति गोटा 100 रुपियाँमा नै किवीका बिरुवा दिइन्छ नि, त्यसैले समयमै सम्पर्क गर्नु है काका।
2: प्रोपाइटर कर्मा शेर्पा, सम्पर्क नम्बर 98 45 34 44 96 र 96 14 95 08 40।
1: टाँसिदेले बहुद्देश्य कृषि तथा पशुपालन फार्म गौरीशंकर गाउँपालिका छ, लुवाङ सादो लखा।
3: श्रमजीवी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 20 साधारण सभा सम्बन्धी सूचना।
4: संस्थाको संचालक समितिको मिति 2083 साल भाद्र 5 गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार संस्थाको 20 वार्षिक साधारण सभा एकाईगत रूपमा सञ्चालन हुने भएको हुँदा सम्पूर्ण शेर सदस्यज्यूहरूलाई अनिवार्य रूपमा उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ।
3: साधारण सभाका प्रस्ताव तथा छलफलका विषयहरू आर्थिक वर्ष 2082-83 को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत तथा छलफल, आर्थिक वर्ष 2082-83 को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत तथा अनुमोदन,
4: आर्थिक वर्ष 2083-84 को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत तथा छलफल, संस्थाको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था बारे जानकारी तथा छलफल,
3: लेखा परीक्षक नियुक्ति तथा पारिश्रमिक निर्धारण सम्बन्धमा, संचालक समितिको कार्य सम्पादन तथा प्रतिवेदन सम्बन्धमा छलफल,
4: नयाँ संचालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निर्वाचन, निर्वाचन सम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया तथा निर्णयहरू,
3: संस्थाको विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन सम्बन्धमा, साधारण सभाको निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्न शेयर सदस्यको तर्फबाट प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने बारे र विविध
4: साधारण सभा हुने मिति र स्थानहरू। मिति 2083 साल असोज 8 गते, भीमेश्वर नगरपालिका 5 विशुनटोल। समय बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 97 42 42 75 17। असोज 8 गते भीमेश्वर नगरपालिका 5 घोकशिला। समय दिउँसो 12 बजेदेखि 3 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 44 23 63 23।
3: असोज 9 गते सैलुङ, सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 काटाकुटी बोर्डिङ। समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 97 42 42 75 17। असोज 10 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 गाउँपालिका आसपास। समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 97 42 42 75 17।
4: असोज 11 गते सैलुङ गाउँपालिका 6 ढुङ्गे बजार बाघखोर। समय बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 44 23 63 23। असोज 11 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 कालापानी। समय दिउँसो 1 बजेदेखि 4 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 97 42 42 75 17।
3: असोज 12 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 झोर मन गाउँ। समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 97 42 42 75 17। असोज 12 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 सरनथली। समय दिउँसो 3 बजेदेखि 5 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 42 42 75 17।
4: असोज 13 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 पाँडेखानी। समय बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 97 42 42 75 17। असोज 13 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 भैँसे बजार। समय बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 97 42 42 75 17।
3: असोज 15 गते मेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 पौटी सभाहल। समय बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 44 30 77 72। असोज 15 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 भित्रे भन्ज्याङ। समय बिहान 8 बजेदेखि मध्याह 12 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 44 23 63 23।
4: असोज 17 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 महिला भवन। समय बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 44 23 63 23। असोज 18 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 7 वडा कार्यालय समय बिहान 10 बजेदेखि

नमस्कार रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम बहिनी थोप्लो सात मेगाहर्ज म बद्र प्रसाद सापकोट आज विक्रम संवत 2083 साल भाद्र कृष्ण पक्ष सन 2026 सेप्टेम्बर 3 तारीख भाद्र 18 गते बिहीबार सप्तमी तिथि अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरी आओ साक्षेण कल्पय भरी।

राजा नमस्कार सारे दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जाई नई परे का घरे मन राखुन सवले दुर्योधन समान कर्णई समान दानमा तागत श्री बलराम कैसरी होस सदबा तकै काममा राजा धर्म कुमार कैसरी होस श्री ब्रह्म ज्ञान यानी विदुर कैसरी ज्ञान होस सुजनमा मानुन बढाले पनि कृति उज्ज्वल होस् सुत सहित का

मेरो नाम सुविधा पोखरेल जफेबाट आको म एउटौ शंखका पाला भूषित करौ मालस्ती माला धरौ देवौ द्वारौ तिस्म सान ननिलौ नागरी गोवर्धनौ तिरिदक्षे बलिदक्षे।

0: एक बात बोले श्री कालिका माई भगवती की
1: जय,
0: भक्तर भगवान की
1: जय,
0: भक्त वत्सल भगवान की
1: जय,
0: सारा भक्त प्राणी की
1: जय।
2: रात माते पांडव वसन कुमा वसन कालिका आउ गोरछ गरुण र दाना बहारू नागमा रावण नासिका।

गई माफी का मागीले झुझुकेर कहाँ मैले बिराए भनी कि मेरा दुई पाउमा त ठोकी दे जन्म फ्लाटेरो अनि त कर न दुई त धनको भतुवा।